0: जीवन इस भौतिक जगत पदार्थ ऊर्जा आकाश और समय के नियमों को सीखता है और फिर इन्हीं नियमों को प्रयोग में लाकर भौतिक जगत पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को साकार करता है। यहाँ भौतिक जगत एवं जीवन के बीच एक विराट संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में एक तरफ अस्त व्यस्त एवं अव्यवस्थित भौतिक जगत है जिसके पास केवल बल है जो उसको निरंतर सुव्यवस्थित करके जीतने का प्रयास करने वाले विवेकशील जीवन का प्रतिरोध करता है। भौतिक शास्त्र एवं रसायन विज्ञान के रूप में मानव ने भौतिक जगत को जानने समझने में काफी समय व्यतीत किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मांड के विरुद्ध जीवन के दैनिक संघर्ष को समझना। यह मत सोचिए कि एक कोशिकीय जीव जीवन जीने के नियमों को नहीं जानता। वह जानता है, उसे जानकारी है कि एक जीवित इकाई में कुछ रसायनों और सूर्य किरणों की सहायता से किस प्रकार भोजन बनाया जाए। जीव विज्ञानी सूक्ष्मतम सजीव कोशिकाओं को प्रबंध कौशल को देखकर दंग रह जाता है। वह इन जटिल तथा सावधानी से काम करने वाली कोशिकाओं को जीवन की इन सूक्ष्म इकाइयों को बड़े ध्यान से एक टक दिखता है और विश्वास नहीं कर पाता है कि यह सब कुछ एक संयोग है। इन्हीं आज की खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जगजीत जी के साथ। जगजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार जी।
0: आशा है आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा निकला होगा।
1: जी हाँ
0: जी। जगजीत जी, आज हमारे पास कौन से हॉरोस्कोप्स हैं?
1: जी, सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 23 फेब 1966।
0: जी।
1: और इनका जो क्वेश्चन है ये बिजनेस के विषय में है। ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, क्या ये समय अच्छा रहेगा, उस विषय में इन्होंने जानना चाहा है। तो सबसे पहले मैंने ये जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक जो इनका होरोस्कोप चार्ट है उसमें जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो मैंने जरूर बताना चाहूँगा।
0: जी।
1: इनके होरोस्कोप में इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो है सूर्य, और इनका जो लग्नेश है, लग्नेश यानी कि जो भी प्लैनेट रहता है अगर वो लग्न को देखता है तो अच्छे योग जरूर माने जाते हैं, लेकिन जब सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन रहता है, योग रहता है, ये जरूर अच्छा नहीं माना जाता। और इनके होरोस्कोप में जुपिटर और राहु के जो योग हैं ये भी कुछ अच्छे नहीं हैं, और इनके होरोस्कोप में कालसर्प योग भी रहता है। कई बार देखने में यह है कि जब भी इंसान के होरोस्कोप में कालसर्प योग रहता है तो जो इंसान हार्ड वर्क अधिक करता है, अचीवमेंट कई बार देखा गया है कि कम रहती है, लेकिन जहाँ तक रहा बिजनेस के विषय में तो इनके जो चंद्र के जो

0: लोग बन रहे हैं वो इनके लिए जरूर अच्छे बन रहे हैं। चंद्र जिस भाव में है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जहां इंसान का जन्म होता है उससे दूर जाकर इंसान चाहे जॉब करे या बिजनेस करे उसमें उन्हें उन्नति जरूर मिलती है। ये कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, जबकि एक तरफ से बृहस्पति या राहु या सूर्य शनि के योग अच्छे नहीं हैं, दूसरी तरफ चंद्र के जो योग बन रहे हैं वो बिजनेस को जरूर जो लाइफ में है वो स्टेबिलिटी जरूर देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि जब चंद्र के ऐसे योग रहते हैं बिजनेस अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं या किसी रिलेटिव की वजह से या फैमिली में कोई ना कोई उतराव चढ़ाव जरूर देखने को मिलता है। और जहाँ तक रहा कि ये साल ये बिजनेस में कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो इस साल भी इनके जो कुछ प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, जैसे कि अगर मैं मंगल की बात करता हूँ, मार्स की बात करता हूँ, तो उसकी स्थिति इनके होरोस्कोप में इस साल बहुत अच्छी बन रही है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर इस साल बिजनेस में कुछ ऐड करता है या उसे बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो जरूर फायदेमंद रहता है। उसमें जो नुकसान के योग हैं वो जो है बहुत कम नज़र आते हैं। तो मैंने यही कहना चाहूँगा कि अगर ये इस साल बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके होरोस्कोप में इस साल जो चंद्र के योग बन रहे हैं वो कुछ अच्छे योग नहीं बन रहे। कई बार देखने में ऐसा भी आया है कि इंसान जब अपने बिजनेस को बढ़ाता है उसे अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, लेकिन इंसान फिर भी उसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। वो सोचता है कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता था या मैं ऐसे कर सकता था। तो मेरी इन्हें यही एडवाइस रहेगी कि इन्हें अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो इन्हें पॉजिटिव जरूर सोचना चाहिए कि जो कार्य आप कर रहे हो या आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपके लिए ज़रूर अच्छा रहेगा। और जहाँ तक रहा ये साल, तो अगर ये अपने बिजनेस को नहीं भी बढ़ाते तो तब भी इनके जो इस साल के योग हैं बिजनेस के लिए वो ज़रूर अच्छे रहेंगे। मैंने यही कहना चाहूँगा कि ओवरऑल ये साल इनके लिए बिजनेस के लिए ज़रूर अच्छा रहेगा। जी
1: जी जगजीत जी, और लिसनर्स को बता दें कि अगर वो भी चाहते हैं जानकारी लेना, जगजीत जी से बातचीत करना चाहते हैं अपने किसी भी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो जगजीत जी से एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो वो संपर्क कर सकते हैं जगजीत से उनके मोबाइल पर 02103901113 उनका मोबाइल है। आप उनसे ईमेल भी कर सकते हैं info@astrologerjagjeet.com पर आप अपना क्वेश्चन और अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हम आप अपना जो डिटेल है इस रेडियो के ज़रिए भी हमें भेज सकते हैं, और हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में कोशिश करेंगे कि आपके हॉरोस्कोप्स को शामिल कर सकें।

हम लोग जीवन के ऊपर बात कर रहे थे. जीवन रूप या जीव जैसे कि एक जीवित मानव शरीर, जीवन के अतिरिक्त भौतिक जगत के पदार्थ ऊर्जा आकाश और समय से मिलकर बनता है. मृत शरीर में जीवन ऊर्जा को छोड़कर बाकी सभी तत्व होते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थ ऊर्जा आकाश और समय. जीवित शरीर में जब तक जीवन ऊर्जा थी उसने जीव को सुव्यवस्थित एवं संगठित किया और फिर मृत्यु के बाद जीव को त्याग दिया. इस प्रक्रिया को हम गर्भधारण से लेकर जन्म

0: विकास क्षय और मृत्यु तक एक चक्र के रूप में जानते हैं। यद्यपि इन प्रश्नों के उत्तर हैं कि जीवन ऊर्जा शरीर छोड़कर कहां जाती है और क्या करती है, लेकिन अभी हमें इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक सप्राण जीव के लिए महत्वपूर्ण है कि वह वृहद जीवन के प्रयासों का साथ देते हुए जीवन को बनाए रखने की चेष्टा में लगा है, और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि वह भौतिक जगत पर विजय प्राप्त करने में सफल हो। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो एक जीव को बनाने के लिए जीवन को सबसे पहले पर्याप्त पदार्थ और ऊर्जा एकत्रित करनी चाहिए, और फिर जीव को दूसरे मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगी जीवों के साथ जुड़ जाना चाहिए तथा अपने भरण पोषण के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त पदार्थ और ऊर्जा जुटाते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवित रहने के लिए उसे मित्रों, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों से परे दो विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए जो मूल रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन को आनंद प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, जीवन को पीड़ा से बचना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डॉक्टर एलरॉन हर्बर्ट ने अपने इस पुस्तक में अपने जो विचार हैं उनको शेयर किया है, और इन्हीं विचारों के साथ हम अपने आज के इस प्रोग्राम में जो हम जगजीत जी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे हॉरोस्कोप्स के ऊपर, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना जो आज का हमारे प्रोग्राम में जो दूसरा हॉरोस्कोप है कौन सा पढ़ना चाहेंगे।
1: जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 2 अक्टूबर 1993, और इनका जो क्वेश्चन है ये मैरिज के विषय में है, मैरिज योग के विषय में है। तो सबसे पहले इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक इनका जो होरोस्कोप है, होरोस्कोप चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं वो मैंने जरूर बताना चाहूँगा। इनके होरोस्कोप में इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर की स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी है। और इनका जो क्वेश्चन है, अगर मैं होरोस्कोप की बात करता हूं तो उसमें फिफ्थ भाव को भी रिलेट करता है, क्योंकि जो पांचवा भाव होता है वो लवर्स का रहता है, फिर सेवन्थ भाव जो रहता है वो पार्टनर का रहता है, और नाइन्थ भाव भाग्य का। तो इन सभी को कंसिडर करने के बाद ही जो योग है ये देखा जरूर जा सकता है, और उसके बाद जैसे कि जुपिटर है उसकी स्थिति भी देखनी जरूरी है। तो इनके होरोस्कोप में अगर देखा जाए जो चंद्र है उनकी स्थिति इनके होरोस्कोप में काफ़ी अच्छी है, और देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिज जो रहती है वो विलिंगली मैरिज रहती है, जहाँ भी कोई पसंद होता है तो मैरिज वहाँ होती है। लेकिन कई बार ऐसे योग बनते हैं जैसे कि मंगल या राहु के कुछ इनके ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसा व्यक्ति इस विषय में कई बार जिद्दी हट्टी जरूर हो जाता है। वो सोचता है कि ये जो मैच है मेरे लिए अच्छा नहीं है, या ये ऐसा है या वो वैसा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो मैरिज है वो डिले जरूर हो जाती है। जबकि इनके जो मैरिज के योग थे वो लास्ट से लास्ट ईयर भी जो मैरिज के योग थे उस वक्त भी इन्हें कोई ना कोई प्रपोजल रहा होगा मैरिज के विषय में, लेकिन इनकी तरफ से ही ना हुई होगी, क्योंकि मंगल के जब योग ऐसे रहते हैं तो इंसान कहीं ना कहीं मैरिज के विषय में बहुत ज़्यादा जो सोचना है ये शुरू कर देता है। तो मैंने यही कहना चाहूँगा कि जबकि इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करूँ भाग्य स्थान के, या मैं बात करूँ जुपिटर के, उसके काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं ऐसे व्यक्ति की, जहाँ भी मैरिज होती है वो ज़रूर अच्छी रहती है। और मैंने यही कहना चाहूँगा कि इस साल भी इनके जो कुछ प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, अगर मैं मंगल की बात करता हूँ या चंद्र की बात करता हूँ या सूर्य बृहस्पति के जो योग बनते हैं वो भी इनके इस साल अच्छे बन रहे हैं, तो ये साल भी इनके जो मैरिज के योग हैं ये अक्टूबर तक इनके कहीं ना कहीं मैरिज के योग जरूर बन रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस साल भी जैसे राहु के जिस भाव में योग बन रहे हैं वो अच्छे नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि इस साल जो इनका मैरिज का प्रपोजल रहेगा वो जबकि इनके लिए अच्छा रहना चाहिए, लेकिन राहु के जब योग ऐसे बनते हैं तो कहीं ना कहीं कोई विघ्न जो है वो डलने के जो योग हैं ये जरूर बनते हैं। तो मैंने ये कहना चाहूँगा कि इस साल इनके जो मैरिज

रिच के योग हैं, ये अच्छे बन रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे जुपिटर की जो स्थिति है, जो कि पति को भी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी है, ऐसे व्यक्ति की जहां मैरिज होती है घर अच्छा रहता है। और दूसरा, जिसके साथ मैरिज होती है उनके साथ जो संबंध है वो अच्छे रहते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि इस साल भी इनके जो मैरिज के योग हैं ये जरूर बनते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत भजन, और इसी भजन के साथ हम लोग जगजीत जी से फिर से बातचीत करते हैं। जगजीत जी, अगला हॉरोस्कोप कौन सा पढ़ना है आपको?
1: जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 24 नवंबर 1958, और इनका जो क्वेश्चन है ये हेल्थ के विषय में है। तो सबसे पहले इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक इनका जो होरोस्कोप है, इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो मैंने बताना चाहूँगा। इनको जो प्लैनेट भी रिप्रेजेंट करता है वो है चंद्र। चंद्र जिस भाव में है वो ज़रूर अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जहाँ कहीं भी कार्य करता है तो जो चीज़ें ज़िंदगी में नहीं होनी होती तो उस विषय में सोचना शुरू करके ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस ले लेता है। और दूसरा, इनके होरोस्कोप में शनि के कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि जहाँ भी इंसान कार्य करता है या जॉब स्टैंडिंग रहती है तो कई बार ऐसा देखा गया कि लेग्स में पेन रहना शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो इनके होरोस्कोप में कोई और दूसरे ऐसे योग नहीं बन रहे हैं कि जो इस तरफ इशारा करेंगे कोई गंभीर बीमारी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति की लेग से रिलेटेड जरूर, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान लेजीनेस फील करता है, तो इस तरह के इनके होरोस्कोप में जरूर योग बन रहे हैं। और मैं बात करूं तो इस साल भी जो इनके प्लैनर्स चेंज हुए हैं, जैसे कि राहु के कुछ योग बन रहे हैं या शनि के और सूर्य के जो योग बन रहे हैं, वो इस साल इनके लिए कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जैसे जन्म के समय इनकी शनि के योग थे तो वही इस बार भी योग बन रहे हैं। तो मैंने यही कहना चाहूँगा कि इस साल नवंबर तक इन्हें अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ भी ये डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं वो इन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि की जब ऐसी पोजीशन रहती है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पाँव पे कहीं ना कहीं चोट लगने के जो योग हैं ये जरूर बनते हैं। तो इस साल की अगर मैं बात करता हूँ तो इस साल इन्हें अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई ऐसे योग नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की जो मैंने बोला कि बहुत गंभीर बीमारी होती है, तो ऐसे कोई योग इनके होरोस्कोप में नहीं बनते हैं।
0: जी जगजीत जी, और हम अपने लिसनर्स को बता दें कि अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपने होरोस्कोप को रीड करवाना चाहते हैं, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इस रेडियो के माध्यम से भी, जिसमें हम हर सप्ताह उनके होरोस्कोप्स को लेते हैं और वन बाय वन करके कोशिश करते हैं कि सभी होरोस्कोप्स को रीड किया जाए। और होरोस्कोप को रीड करवाने के लिए हमें उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए एंड टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, ताकि हम लोग आपकी पूरी डिटेल जो है जगजीत जी को फॉरवर्ड कर सकें और जगजीत जी उसके अकॉर्डिंगली आपके जो सवालों का है वो जवाब दे सकें। और जगजीत जी से बात करने के लिए जगजीत जी का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो 02103901133। ईमेल है info@astrologerjagjeet.com। और हमेशा की तरह जगजीत जी जब भी

हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमारे पास लगता है कि वक्त की कमी होती जाती है हम लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं अपने लिसनर्स के साथ बट क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं देता तो इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने आने वाले सप्ताह में अपने लिसनर्स के साथ